0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Zabardast hits.
9: Music never sounded better.
10: Fazan 97.1 FM.
9: I love it.
11: You are listening 97.1 FM.

Guess, guess, guess, guess, guess,

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real...
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow, FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
12: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
3: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: Hit music.
1: Back to back.
2: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
3: जो मंगना सी वो तो मिल गया।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: Attention!
6: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
9: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: Hit music, entertainment, poetry, news, and health.
12: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
9: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार एंड काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्ब टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डर ही नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Espeshul Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing...
12: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
8: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
7: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
8: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
7: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
8: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
7: और अंगारों भी तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
8: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
7: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
8: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97.2 ET
8: Peshawri Dera.
9: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
8: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
7: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
8: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
7: मुगल बिल्डर्स?
8: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
8: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
7: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
8: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट और आप सभी की दोस्त सनम फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो टीवा डायलॉग। सो द लिसनर्स, टीवा डायलॉग का ये सफर रहता है आपके साथ हर रोज ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक। सो इस सफ़र को आपको मुझे साथ में हो चुका है एक घंटा मुकम्मल। सो इस एक घंटा मुकम्मल होने पर मैंने सोचा कि एक बार फिर से क्यों ना आप सभी के साथ अपना इंट्रो शेयर किया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं बार बार बताती रहूँ कि किस तरह से आप और मैं जुड़ सकते हैं। सो किस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस आपको यूँ है कि आपने सेव कर लेना है ये नंबर बहुत ही सिंपल सा है, 01157100971। सो बस जल्दी से इस नंबर को कर लेना है सेव। इस नंबर पे जाकर आपने हमसे शेयर करनी है वो सारी दिल की बातें जो आप करना चाहते हैं किसी से, या आप चाहते हैं कि कोई आपको सुने, आपको समझे, या फिर आपको वो तमाम तर बातें जो आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी एडवाइस मिलें। सो आप वो सभी बातें किसी और से नहीं बल्कि हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको देंगे एक बहुत ही अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, साथ ही साथ हम आपकी वो दास्तान सुनेंगे जो आप हमें सुनाना चाहते हैं। सो वेल लिसनर्स, एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हुई तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहीं और नहीं मिलेगी बल्कि मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे। तो आप जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला, और हमारे यहाँ कितने नए इवेंट्स होने वाले हैं। सो वेल लिसनर्स, अभी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने हमें एक प्यारी सी रिकमेंडेशन भेजी है। सो वो चाहती हैं कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम कि डीवा डायलॉग में हम वही तमाम तर म्यूज़िक शामिल करते हैं जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। सो प्रोग्राम में ऐड करते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक बहुत ही ज़्यादा है खूबसूरत, प्लस थोड़ा सा है इमोशनल। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत ट्रैक की उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर यहीं से अपने गुफ्तगू का जो सिलसिला हमने एक घंटा से स्टार्ट किया हुआ है इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। सो आपने कहीं भी नहीं जाना, स्टे ट्यून विद अस।

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? वेल, इसी तरह से आप भी अपना पसंदीदा ट्रैक शो में शामिल करवा सकते हैं. और पर्सनली मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, एंड देर वॉज़ अ टाइम इन माई लाइफ जब ये गाना मैं बहुत ज़्यादा सुना करती थी, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत ही पुराने ड्रामे का OST है. और आई थिंक सो आप सभी ने भी वो ड्रामा देखा होगा. सो जिन जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा है वो इसे रिलेट कर सकते हैं कि उन सभी लोगों के लिए ये गाना बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है. वेल लिसनर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से किया था वादा कि आज हम बात करेंगे थोड़ी सी ब्यूटी के बारे में, मेकअप के बारे में, और कुछ ऐसी टिप्स आप सभी के साथ शेयर करूंगी जो कि ब्यूटी से रिलेट करती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी डिवाज खूबसूरत दिखे, ना सिर्फ खूबसूरत दिखे बल्कि कॉन्फिडेंट भी दिखें. सो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप नेचुरली ग्लो करते हैं, आप खूबसूरत दिखते हैं, तभी आपके अंदर खुद एतमादी आती है कि आप दुनिया को फेस कर सके और दुनिया के सामने खड़ी हो सके. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही ब्यूटी टिप्स जो कि ना सिर्फ आपको खूबसूरत बना देंगी बल्कि आपके अंदर छुपे उस कॉन्फिडेंस को भी उजागर करेंगी. सो आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी 5 इजी DIY फेस मास्क. ये ऐसे मास्क हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, बेसिक हैं, और आप आसानी इन्हें घर में बना सकते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. सो अब हम बात करते हैं फर्स्ट DIY मास्क की. सो जो हमारा पहला DIY मास्क है वो ब्राइटनिंग के लिए है, ठीक है. सो अगर आपकी स्किन हो चुकी है बहुत ज़्यादा टैन या फिर सन एक्सपोजर की वजह से समटाइम्स होता है कि आपका जो नेचुरल स्किन टोन होता है वो काफ़ी हद तक फेड हो जाता है, डल डल लगने लगता है, और मानो ऐसे लगता है कि जैसे कि आपका जो स्किन कलर है वो काफ़ी डार्क हो चुका है. सो अगर आप भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है वो डल हो चुकी है, सो ये मास्क आपकी मदद करेगा कि ये आपका नेचुरल निखार वापस से लेकर आए और आपको खूबसूरत और दिलकश दिखने में मदद करे. सो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए बहुत बेसिक से हैं. आपको चाहिए 1 टेबलस्पून रॉ हनी एंड 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस. सो बेसिकली जो लेमन जूस होता है वो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि कुछ स्किन्स में अ काइंड ऑफ इरिटेशन क्रिएट करते हैं. सो आपने जब भी ये मास्क ट्राई करना है तो सबसे पहले पैच टेस्ट लाजमी करना है. सो बेसिकली आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स एंड अप कर लेना है. मिक्स करने के बाद आपने अप्लाई करना है फेस पे, हैंड पे, और इवन के आप अपने फीट पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जहां जहां भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी अनइवन टोन स्किन हो चुकी है तो आप इसको अप्लाई करें. अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद आपने इसे आराम से पानी से धो लेना है. अच्छा, बहुत सारे लोगों को अब ये होगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है. सो आई प्रेफर कि आप इसे रात में यूज़ करें, क्योंकि लेमन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को काफ़ी हद तक सेंसिटिव बना देते हैं. सो दिन को आपको डेली सूरज को फेस करना होता है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है. सो आई सजेस्ट कि आपने रात में इस मास्क को अप्लाई करना है एंड देन फिर इसे वॉश करके सोना है. सो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हनी जो है वो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को और एक्ट करता है एज ए नेचुरल एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, जबकि लेमन जूस है उसके अंदर विटामिन सी की एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी पाई जाती है जो कि स्किन को ब्राइटन अप करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है. सो सबसे पहले आपने इस मास्क का कर लेना है एक अदद पैच टेस्ट, और अगर आपको लगे कि आपकी स्किन इससे इरिटेट नहीं हो रही तो आपने इसे वीक में 2 से 3 मरतबा अप्लाई करना है. और जब आप इसको 2 से 3 मरतबा अप्लाई करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करते रहेंगे तो यू विल सी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और काफ़ी फर्क आपको नज़र आएगा. सो ये था आज का हमारा फर्स्ट DIY ब्यूटी मास्क. अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेकंड हाइड्रेटिंग मास्क की जानिब. सो इस मास्क के लिए, ये जो मास्क है ये बेसिकली हाइड्रेटिंग मास्क है, तो ये उन स्किन्स के लिए बेस्ट है जिनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है, और समटाइम्स आपकी स्किन इतनी ड्राई होती है कि उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा. सो जितने भी मेरी डिवाइस हैं जिनकी स्किन है ड्राई, तो दिस मास्क इज़ फॉर यू.
सो इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 rib एवोकाडो प्लस 1/2 rib बनानास प्लस 1 tablespoon प्लेन योगर्ट। सो तीन इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, एवोकाडो, बनाना एंड योगर्ट। सो आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, मैश करके। तो एक बहुत ही स्मूथ सा थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपने इसे अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर और 15 से लेकर 16 मिनट्स के बाद आपने इसे कर देना है रिमूव। सो बेसिकली एवोकाडो में बहुत सारे हेल्थी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जबकि बनाना जो है वो मॉइस्चर का काम करता है। अच्छा, और योगर्ट कंटेन्स लैक्टिक एसिड, ठीक है, जो कि जेंटली आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। सो आपने इस मास्क को कैसे कैसे अप्लाई करना है, आपने इस मास्क को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अप्लाई करना है एंड यू विल सी के आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो थोड़ी सी हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी, आपको फील होगा कि आपकी स्किन में काफ़ी हद तक जान पैदा हो रही है। तो जो पहला हमारा मास्क है वो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी, लेकिन ये जो हमारा दूसरा मास्क है ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी उनकी स्किन से वो ड्राइनेस ख़त्म नहीं होती। सो आपने इस मास्क को लाजमी ट्राई करना है एंड देन ट्राई करने के बाद मुझसे शेयर करना है अपना ऑनेस्ट रिव्यू। तो देखते हैं कि ये आपकी स्किन पर किस तरह से वर्क करता है। वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही और भी बहुत सारे DIY ब्यूटी मास्क मेरे पास मौजूद हैं जो कि आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारे पास आई है एक प्यारी सी सॉन्ग रिकमेंडेशन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपकी फरमाइश को लाजमी पूरा करते हैं, तो शामिल करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को शो में। सो आइए मिलकर सुनते हैं दिस ब्यूटीफुल ट्रैक और ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात।

चलिए तो लिसनर्स आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट DIY मास्क की जानिब। सो जैसा कि इससे पहले हमने बात की ज़रा ड्राई स्किन वालों के लिए, सो ऐसे DIYs के लिए जिनको इस चीज़ की शिकायत रहती है कि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल, ड्राई और फेड है। अब ज़रा बात करते हैं ऑयली स्किन टोन्स की, क्योंकि आई नो जहाँ ड्राई स्किन वालों का ये मसला होता है कि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, पैची रहती है, तो वहीं ऑयली स्किन टोन्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल आता है, जिस ऑयल की वजह से मेकअप स्टे नहीं करता, स्किन बहुत ग्रीसी लगती है और आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्नी हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी स्किन अ लॉट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसके नतीजे में आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और आपके जो पोर्स हैं जिसे क्लिंस नहीं हो पाते। सो उनके लिए भी है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, तो आप सभी से शेयर करती हूँ ये बहुत ही जबरदस्त सा DIY मास्क। सो ये मास्क बेस्ट है ऑयली, एक्ने प्रोन और इरिटेटिंग स्किन के लिए। इसके लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सो 2 टेबल स्पून ग्राउंड ओटमील प्लस 1 टेबल स्पून प्लेन योगर्ट, साथ ही साथ हमें चाहिए 1 टीस्पून हनी। सो ये बेसिक से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई थिंक सो हर घर में मौजूद होते हैं। सो आपको इनके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आपको क्या करना है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे। सो 15 से लेके 16 मिनट्स के बाद आपने अच्छी तरह से फेस का मसाज करना है और मसाज करते करते सर्कुलर मोशन में आपने इसे रिमूव करना है। इससे ना सिर्फ ये होगा कि आपकी जो स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी रिमूव हो जाएगा, डेड स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ये DIY मास्क आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। सो ओट मील जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं आपकी स्किन का जितना भी एक्सेस ऑयल होगा, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करते हैं, और योगर्ट क्लीनिनेस का काम करती है और पोर्स को टाइट करती है। सो आई थिंक सो कि ऑयली स्किन टोन्स का प्रॉब्लम यही होता है कि उनके जो पोर्स होते हैं बेसिकली ओपन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ के कुछ एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से हमेशा पोर्स क्लॉक रहते हैं और अच्छी तरह से एक्सफोलिएशन नहीं हो पाती। सो आपने इस मास्क को यूज़ करना है वीक में 2 से 3 मरतबा, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको कंसिस्टेंसी से यूज़ करेंगे, यू विल सी कि आपकी जो स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ है, जब तक आप उसको एक प्रॉपर मैनर वे से यूज़ नहीं करते तब तक आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो ये था वो मास्क जो हमारी सभी डिवाइस के लिए है जिनकी स्किन है ऑयली। सो आपने लाजमी इस मास्क को ट्राई करना है, एंड देन ट्राई करने के बाद मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको ये मास्क कैसा लगा और इसके आफ्टर और बिफोर रिजल्ट्स क्या हैं।

अब बात करते हैं एक अदद और मास्क की। ठीक है, ये डीप क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन की तमाम तर इम्प्योरिटीज़ को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है, इस मास्क के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून क्ले पाउडर, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनीगर और थोड़ा सा पानी। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अब अप्लाई किस तरह से करना है उसका भी तरीका आप सभी से शेयर करती चलती हूँ। अच्छी तरह से इन 3 इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है मिक्स और किसी भी नॉन मेटल स्पून या फिर बाउल के अंदर। अब आपने इसे अप्लाई करना है 5 से लेकर 10 मिनट तक, और जैसे ही 5 से लेकर 10 मिनट तक मुकम्मल हो जाए तो आपने साथ ही इसे रिमूव कर देना है। अच्छा, बेसिकली क्ले क्या करती है, आपकी स्किन के अंदर मौजूद जितनी भी डर्ट होती है, टॉक्सिन्स होती है, उसे रिमूव करती है, और एप्पल साइडर विनीगर बैलेंस करता है स्किन के पीएच लेवल को। ये डीप क्लीनिंग के लिए, आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑर्गेनिक रेमेडी है, और इंग्रेडिएंट्स भी सभी वही हैं जो कि टोटली ऑर्गेनिक हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट्स से आपको कोई भी किसी किस्म की भी इरिटेशन होगी। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि उनको लेमन से, विनीगर से या इस तरह की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो आपने बिल्कुल भी इसे अप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम सिंपली आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं अपने हाथ पर, बाजू पर लगा कर। 1 से 2 मिनट में आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी स्किन इरीटेट कर रही है या नहीं कर रही, एंड देन तभी आपने इन मास्क को अप्लाई करना है। वेल लिसनर्स, जैसा कि कल मैंने आपसे किया था वादा कि आज हम बात करेंगे ब्यूटी से रिलेटेड, तो काफ़ी हद तक हमने आपके तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश की है। फर्स्ट हमारा आज का जो मास्क था वो ब्राइटनिंग के लिए था, साथ ही साथ हमारा आज का जो दूसरा मास्क था वो ड्राई स्किन वालों के लिए था, और जहाँ हम बात करें तीसरे मास्क की तो वो था ऑयली स्किन टोन्स के लिए, और हमारा आज का जो लास्ट मास्क है वो डीप क्लीनिंग के लिए है। आई थिंक सो कि अगर आप इन सभी मास्क को बाकायदा रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन पर बाकायदा रिजल्ट्स नजर आएंगे। माय लवली डिवास, ये था हमारा आज का ब्यूटी सेगमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं सिंपली 01157100971 इस नंबर पर जाके। वेल लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए आपने इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहना है, बंधे रहना है, और आपने कहीं भी नहीं जाना। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लीजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो टीवा डायलॉग। वेल लिसनर्स, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी बहुत सारी ब्यूटी टिप्स की, तो आई थिंक सो आपको जितनी भी शिकायत थी अपने ब्यूटी को लेकर, अपने स्किन केयर को लेकर, तो वो अभी तक तो दूर हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन या आप चाहते हैं कि हम मज़ीद DIY मास्क आप सभी से शेयर करें, सो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम शो में वो तमाम तरह चीज़ें ऐड करें जो कि आप सुनना चाहते हैं। वेल लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद खूबसूरत से ट्रैक को शामिल करने का, तो आइए मिलकर सुनते हैं यह खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि गुफ्तगू के साथ साथ ये ट्रैक भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मूड को थोड़ा सा इंस्टेंटली बूस्टन अप करना होता है और आप जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोर हो जाते हैं आपकी बोरियत को भी करना होता है दूर। तो ये एक न्यू ट्रैक आया है, मैंने रिसेंटली ही सुना है क्योंकि मैंने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया था एंड देन आई सॉ एंड वॉच दिस OST, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस OST को हमारे सभी लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए। आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

जी तो लिसनर्स, वक्त हो चुका है शो के उस सेगमेंट को स्टार्ट करने का जो कि ना सिर्फ मेरा बल्कि आपका, हम सभी का है फेवरेट, क्योंकि जहां बात हो खाने की वहीं एशियन कम्युनिटी ये ना कहे कि हमारी फेवरेट टॉपिक है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई नो हम एशियंस को खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और हम चाहते हैं कि खाना भी हो ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा डिलिशियस हो, यमी हो और हमें बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स पुट ना करने पड़े और बन जाए बहुत आसानी से। सो वेल लिसनर्स, जैसा कि कल हमने स्टार्ट की है एक न्यूज सीरीज जिसपे मैंने आप सभी से कहा था कि इस पूरा वीक हम बनाएंगे टोटली पाकिस्तानी कुजीन। सो कल हमने मज़ेदार सा शाही कोरमा बनाया था और आप सभी का फीडबैक मुझे मौसूल हुआ और बहुत ही अच्छा फीडबैक था और मोस्टली लोगों का कहना था कि उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। वेल थैंक यू सो मच आपकी इस कॉम्प्लीमेंट का। सो इसीलिए आज भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ इसी तरह की मज़ेदार सी डिलिशियस सी रेसिपी। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट हांडी। सो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस क्रीमी पाकिस्तानी कुजीन है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स दरकार होते हैं उसमें बोनलेस चिकन, योगर्ट एंड फ्रेश क्रीम। सो ये इन तीनों की मदद से बनती है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होती है और इसका टेस्ट हमारी जितनी भी टिपिकल हांडी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो इसको बनाने के लिए तकरीबन आपको चाहिए 25 से लेकर 30 मिनट और साथ ही साथ चाहिए कुछ अदद इंग्रेडिएंट्स। वेल जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपसे बारी बारी शेयर करती हूँ और आप जल्दी से अपनी नोटबुक, डायरी या फिर कॉपी रेडी कर लीजिए ताकि जब मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करूँ तो कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। सो वेल हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बोनलेस चिकन, 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी, 4 to 5 tablespoons, अनियन 2 अदद मीडियम साइज के, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons, योगर्ट 1 कप, फ्रेश क्रीम 1.5 कप। आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सुपरमार्केट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए काजू किशमिश पेस्ट, 10 से 12 काजू जिनको हम थोड़े से पानी में अच्छे से पीस कर रख लेंगे, ग्रीन चिलीज 4 से 5 अदद, सफ़ेद मिर्च यानी कि वाइट पेपर पाउडर 1.5 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही साथ कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून।

बात ये होती है कि ये हमेशा ब्लैक पेपर में ही रेडी होती है, सो इसका टेस्ट, इसका अरोमा आपको टिपिकल सालन से काफ़ी हद तक डिफरेंट मिलेगा। वेल लिसनर्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप सभी से कर दिए शेयर। तो अगर आपका कोई भी इंग्रेडिएंट हो चुका है मिस तो आप मुझे बता सकते हैं, डू लेट मी नो 01157100971। इस नंबर पे जाके आपकी तमाम हर तरह की क्यूरीज को हम दूर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका फुल प्रोसीजर कि किस तरह से हम झटपट इस रेसिपी को रेडी करेंगे।

सो सबसे पहले हम कोई सी भी कढ़ाही यूज़ कर सकते हैं. सो उसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल या फिर घी और इसे कर लेंगे अच्छे से गर्म. जैसे ही गर्म हो जाए साथ ही हम ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट. 2 से लेकर 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे. ठीक है, ध्यान रखेंगे प्याज का रंग बदलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा उसको पकाना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए. अदरवाइज अगर हम उसको ज़्यादा कुक करेंगे तो प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो इससे ये होगा कि हमारी हांडी का कलर भी चेंज हो जाएगा. सो जैसे ही 2 से 3 मिनट में कच्चापन दूर हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे. इसके बाद बोनलेस चिकन ऐड करेंगे और तेज़ आंच पर इसे तब तक हम पकाएंगे कि जब तक हमारे चिकन का रंग बिल्कुल सफ़ेद ना हो जाए. सो जैसे ही आपके चिकन का रंग तब्दील हो जाए आंच को धीमा कर देंगे. इसमें नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च, पिसी हुई मिर्चें शामिल करेंगे. ठीक है, तमाम तर मसाला जात शामिल करने के बाद मज़ीद इसे 2 से लेकर 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सो अब बारी आती है इसमें मिक्स किया हुआ दही, काजू का पेस्ट, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने की. सो थोड़ा सा इन्हें मिक्स करेंगे, ढक्कन को बंद करेंगे और मीडियम हीट पर इसे 10 से लेकर 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे. तब तक के लिए चिकन भी अपना पानी दही के साथ छोड़ देगा और अच्छे से गल जाएगा. सो जैसे ही आपका चिकन गल जाए और ऑयल ऊपर आने लगे तो आंच को तेज़ कर देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे. अब आंच बिल्कुल हल्की दोबारा से कर देंगे और मज़ीद इसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. सो अब हम क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. ठीक है, सिर्फ 2 से लेकर 3 मिनट तक और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे दम पर छोड़ देंगे इतनी देर के लिए कि हमारा जो क्रीम है और कुकिंग ऑयल है वो थोड़ा अलग अलग हो जाए. तो बस टड़ा, फाइनली आपकी मज़ेदार से रिच क्रीमी वाइट हांडी हो गई तैयार. सो अब आप इसे गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं अदरक जो कि हमने बारीक लंबी काट के रखी थी और खूबसूरत से ऐसे डेकोरेट करिए. ठीक है, और चाहें तो आप इसे लंच में बना कर खा सकते हैं या चाहें तो डिनर में विद फैमिली इसको खा सकते हैं. सो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से नोश फरमाते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर गरम गरम नान के साथ. सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी इस सीरीज़ की सेकंड पाकिस्तानी कुजीन. कैसे लगी आपको ये रेसिपी, अपना फीडबैक हमसे शेयर करिएगा, लाजमी बताइएगा और लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा. वेल लिसनर्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं अपना फीडबैक और हमें बताते हैं कि आपको हमारी बताई हुई रेसिपीज कैसी लगती हैं. सो कल की रेसिपी का तो बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मौसूल हुआ था, तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप आज की रेसिपी को भी ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझसे लाजमी शेयर करेंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी.

0: वेल लिसनर्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी के बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा म्यूज़िक भी सुना जाए, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। और वैसे भी ये ट्रैक मेरी नज़रों के सामने ही है, तो हम इसको सुन लेते हैं। ठीक है, इस खूबसूरत से ट्रैक को सुनते हैं। ट्रैक के उस पार आपसे फिर गपशप का सिलसिला जारी करेंगे।
1: ये सितारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीन पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर।

किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के देखते हैं।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा, और मुझे भी ये ट्रैक बहुत पसंद है। अब मेरे ख्याल में कल मैंने इसको प्रोग्राम में प्ले किया था, और फिर उसके बाद में बस फरमाइश पेश की आई है।

0: एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अभी जो है ना मेरे पास एक और ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, और ये भी ट्रैक मेरे ख्याल में अपने प्रोग्राम में पहली दफ़ा ही प्ले करने वाली हूँ। अब मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाएगी जो पहले कभी भी मेरे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हों। सो अभी मेरे ख्याल से वो चीज़ शुरू हो चुकी है। अभी मेरे पास ना एक बड़े खूबसूरत सा ट्रैक है और आपको पसंद भी आएगा वो सुनेंगे तो।
1: मैं पानी नदियां दा तेरा नाम समंदर,
0: लेकिन इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आपने साथ देना है, साथ होने का एहसास दिलाना है। अभी मेरे पास एक फरमाइश थी और वो काफ़ी जो है ना मतलब लंबा ही गाना है, तो फिर मैंने कहा था उसको भी प्ले नहीं करते क्योंकि मैंने आपके साथ गपशप भी करनी होती है, फिर वो उस तरह से मज़ा भी नहीं आता बात करने का। सो वेल, आइए चलते हैं अगले ट्रैक की जानिब। स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड ऐप। इस ट्रैक को सुनिएगा, साथ दीजिएगा और साथ होने का हमेशा की तरह एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। मुझे भी शिकायतें लगानी है, बहुत सारी शिकायतें लगानी है, पर मुझे बंदा नहीं मिल रहा कि मैं शिकायत लगाऊं किसको। इसलिए तो मैं अपना टाइम उठा के, यानी कि अपना बोरी बिस्तर उठा के आपकी तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। और ये वो गाड़ी है जो बिना पेट्रोल के चलती है, इट्स मीन के वक्त के साथ चलती है। और वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब बातें करते हुए, कब चैट टेक करते हुए बीच में कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ जाता है। सो वेल, या तो कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ जाता है या फिर टाइम ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को खाना शुरू करते हैं ना, तो ख़त्म तब होती है जब आपको मज़ा आने लग जाता है। सवाल अभी इसी के साथ साथ आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा।

वाला भी इसी के साथ साथ आपको अपनी आवाज़ सुनाते रहेंगे, लेकिन अभी जो है प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप मुझे मैसेज कीजिएगा और मैसेज करके कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहिए, कोई नसीहत किसी को करवाना चाहिए तो मुझे आवाज़ में बताएगा। जैसे ही आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा तो मैं उसको फ़ौरन से प्रोग्राम में शामिल कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही कह देते हैं कि प्रोग्राम में हाल होने लगी है कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा। मिलते हैं आपको कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं आपको एक खूबसूरत से गाने के साथ। मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। अभी जो है ना, मेरे पास एक ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, तो मेरी कोशिश ये है कि उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, ताकि फिर मुझे ये ना बोला जाए कि आप तो हमारी फरमाइशों को पूरा ही नहीं करते। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, सबसे पहली बात ही यही आती है। राहत फतेह अली खान की आवाज़ को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सो इसके उस बारे की आपसे मुलाकात, अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना। जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज। लंच बॉक्स में मेरा आपका साथ रहेगा ठीक ठीक 2 बजे तक। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

और उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ आया था ठीक है ठीक 2 बजे तक। अभी प्रोग्राम में मैंने कुछ ट्रैक शामिल किया, यानी कि एक ट्रैक शामिल किया था और मुझे पता था ये काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फरमाइशों को हम पूरा करते हैं और आपको निराश नहीं करना चाहते। अभी जो है मेरे पास ऐसे और भी फरमाइशें आना शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि जब मैं एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ फिर उसी की तरह के प्रोग्राम में ट्रैक की फरमाइश आती है कि ये वाला प्ले कर दें, ये वाला प्ले कर दें, वो ज़रूर बनेंगे आपके साथ। बड़ी प्यारी बात प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहती हूँ कि तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। और मेरे ख्याल में अगर इस बात को हम गहराई में करें, मतलब अल्फाज तो काफ़ी चंद छोटे से हैं, लेकिन अगर हम इसको डीपली जाके इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें तो बहुत सी ऐसी बातें हमारे लिए निकलेंगी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, और जब हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे तो मे बी शायद फिर आपका दिमाग काम करे कि हाँ हाँ ऐसा ही है। जब आप दूसरों का बुरा सोचते ना तो ऑटोमेटिकली आपका बुरा हो जाता है, तो कोशिश ही करें कि किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो पहले आपके हक में कबूल होती है। तो फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जब आप किसी का बुरा चाहते हैं ना तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम भी आता है कि आपको खुद ब खुद मतलब पता ही नहीं चलता कि आपके साथ बुरा हुआ तो हुआ कैसे। हाँ, फिर उस टाइम पर इतनी समझ ज़रूर आ जाती है कि उस टाइम पर हमने उस इंसान के साथ फलाह बंदी के साथ कुछ ऐसा गलत काम कर दिया था, उसके साथ ज्यादती कर दी थी, तो ये उसी की सजा है। पता चल जाता है इंसान को, लेकिन फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं रहता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपने कामयाबी की तरफ जाना है, अगर आपने कोई अपना गोल सोचा हुआ, कोई प्लान अपना आगे के बारे में सोचा हुआ है, तो उसको जो है ना पूरा करें, लेकिन उसके पीछे किसी का नुकसान ना करें। किसी की नाकामी के आगे अपनी कामयाबी रखना नहीं, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। अपनी कामयाबी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें और ऊपर वाला आप पे कर्म करें। अगर आप किसी ऐसी मंजिल तक पहुँचाएं जहाँ पर आपका ख्वाब था पहुँचना, फिर उसके बाद आप उसके बंदों का वसीला बने, ना कि अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लें कि नहीं अब तो हम इस तरह के हो गए, अब हम उनकी तरफ ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है, बल्कि कभी ना कभी किसी टाइम में आप भी उसी इंसान की जगह पर थे, लेकिन अभी आपने अपने आप में चेंजिंग लेके आए हैं। सवाल अभी इसी के साथ साथ प्रोग्राम में मेरा आपका साथ ठीक ठीक रहेगा आपको पता है, बट अभी जो है ना प्रोग्राम में एक और छोटी फरमाइश को शामिल कर देते हैं। कोक स्टूडियो सीजन 9। अच्छा, सोनी महिवाल की स्टोरी भी बड़े मज़े की है यार। मैंने अभी तक सिर्फ इसके बारे में सुना ही है इसको, मतलब इस पर कोई रिसर्च नहीं मैंने की ना इसको, उसके बारे में मैंने पढ़ा अभी खुद से, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसकी कहानी को पढ़ूँ कि क्या सीन था इनका। सवाल आप भी ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा, लेकिन अभी के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा, कोक स्टूडियो को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं इन खूबसूरती आवाज़ों के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। चिल्लाती हुई आवाज़ों के साथ एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। अंकल गाते गाते थोड़ा सीरियस ही हो गए हैं। मैंने कहा ये ना हुआ उनकी चीखें जो है वो आपके कानों के पर्दों को फाड़ दे, इससे अच्छा कि मैं आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी कर लूँ। सो वाला बी इसी के साथ साथ जो है ना वो प्रोग्राम में वक्त हुआ जाएगा थोड़ी ही देर बाद एक कमर्शियल ब्रेक का, और फिर कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहिए आपसे मुलाकात। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अपने दिलों को थाम के रखिएगा, साथ दीजिएगा, साथ होने का हमेशा की तरह एहसास दिलाते रहिएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो 107.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोराज की। सर, उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में आज कोई स्पेशली कोई टॉपिक नहीं रखा जा रखते आज जो है ना वो ट्रैक ही प्ले करते, क्योंकि मेरे पास फरमाइशें कुछ इस तरह से हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको बीच में आके अपनी आवाज़ सुनाती रहूँ, पर के उसके साथ साथ ट्रैक भी प्ले करती रहूँ आपकी फरमाइश के। अभी मेरे पास चंद ट्रैक्स ऐसे हैं जिनको प्रोग्राम में प्ले करने का कहा गया है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा करूँ, आपको निराश ना करूँ। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी से लिया गया ये ट्रैक। तुम क्या मिले, आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक को सुपारेगी आपसे मुलाकात, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

उतनी जफर के करीब हो रही थी। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है,
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: सो उसी के साथ साथ अभी जो है ना वो प्रोग्राम है हमारा लास्ट सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है म्यूज़िक का, और म्यूज़िक जो है मैं आपकी मर्ज़ी के प्ले करती हूँ। आज जो दिन है ना तो उस दिन के हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कम ही शामिल किया है, क्योंकि फरमाइशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी कोशिश यही है कि आपकी इच्छाओं को, आपकी फरमाइशों को पूरा किया जाए, ना कि आपको निराश किया जाए। सवाल अभी मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, पंजाबी ट्रैक की। मैं कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ मतलब ऐसे वैसे ट्रैक शामिल करूँ या दुखी सैड वगैरह, बट मेरी कोशिश ये थी कि अंकल आंटीज़ की फरमाइश को भी पूरा करूँ, उसी के साथ साथ फिर पंजाबी ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल करूँ, मेरी ये भी यही कोशिश रहती है। सवाल अभी जो है एक छोटे से ट्रैक के प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, आपको पसंद भी आएगा। सवाल साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा,
1: हो गए
0: मिले नू चलिए आओ चलो चलते हैं इस ट्रैक की जानिब, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। सवाल उसी के साथ साथ अभी जो है ना, वो तकरीबन गाना बहुत छोटा सा था, लेकिन है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छोटी छोटी फरमाइशें ही मेरे पास आए हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो मैं शामिल करना चाहती हूँ प्रोग्राम में आपकी फरमाइशों के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई मैं जाते जाते जिनकी भी फरमाइशें पूरी कर दूँ, जिनकी फरमाइशें पूरी हो सकती हैं उनकी मैं कर जाऊँ। सवाल अभी एक और छोटे से ट्रैक की फरमाइश आन पहुँची है, ये सुनते हैं, इस ट्रैक की जानेब बढ़ते हैं। इस ट्रैक की जानेब साथ धीरे का साथ होने का एहसास आ रहे थे, घर मोरे परदेसिया, सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के उस बारे की आपसे मुलाकात, साथ दीजिएगा, स्टे ट्यून्ड 97.1 FM एंड डैप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। सारे गामा करते करते आपके साथ एक बार फिर से प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। 16:20 के साथ साथ तकरीबन वक्त भी काफ़ी कम रह चुका है। मैं भी शायद मेरा आपके दरमियान से 10 मिनट ही बाकी रह चुके हैं, तो अभी कोशिश यही है कि जो जितने भी ट्रैक प्ले हो सकते हैं मेरे से मैं प्रोग्राम में प्ले कर जाऊं। बट अभी जो है ना, एक और छोटी सी फरमाइश को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरे पर्सनल नंबर मुझसे फरमाइश की गई है, तो मैं इतना कह देती हूँ कि अगर आपने कोई फरमाइश करनी है तो आप हमारे स्टूडियो के लाइव व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ी आसान सा है। जिन नए लोगों ने आज भी 97.1 FM को ट्यून किया, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 01157100971। इस खूबसूरत नंबर कीजिएगा सेव। सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। बस जितनी रुपये फरमाइश मैं आपकी पूरी कर सकती हूँ कर दूंगी, बाकी ट्रांसमिशन हमारी आपके साथ जारी रहेगी, तो बाकी फरमाइशें आप उनसे कर लीजिएगा। सवाल आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की जानिब। हैप्पी न्यू ईयर मूवी का ट्रैक है जी, मनवा ला गया। ये सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के इस बारे की आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप।

0: तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संधिरा, सिर्फ तुम्हारा।
2: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो वजन 7.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। वेल ओ के साथ करते हुए आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं लंच बॉक्स में, जहाँ मेरा आपका साथ 2 बजे तक रहता है और तकरीबन अभी काफ़ी कम टाइम रह चुका है मेरे और आपके दरमियान।

12 बीसी के साथ साथ मेरे ख्याल से बढ़ते हैं अगले ट्रैक की जानिब, जिसकी फरमाइश हमसे की गई है। बस वो ही बात आ गई ना कि मुझे ट्रैक ढूंढे नहीं जाते। वो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पार है कि आपसे मुलाकात, इसके उस पार चाहेंगे आपसे इजाजत। और साथ दीजिएगा, साथ होने का अभी तक के लिए एहसास दिलाइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड डैप।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उसी के साथ साथ अभी आपसे ये कहने आया है कि प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त, क्योंकि एक बार आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा, एक बार फिर से आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा। और कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान। छोड़े जाती हूँ आपको एक और खूबसूरत से ट्रैक के साथ। अल्लाह हाफिज।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: Tu...
1: It's commercial time.
2: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You ready?

0: अपनी मॉर्गेज चक। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाह जी, आया नू मुझे कहते रहना अरसलान अली, और आप सुन रहे हैं रेडी फदा 97.1 एफएम नोटिंगम से लाइव। टाइम हो चाहता है जी 2:30 का, और आपका और मेरा साथ रहने वाला है ठीक 4 तक। इस साथ के अंदर आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, बड़ा म्यूज़िक का तड़का लगने वाला है, बड़ा शानदार किस्म का म्यूज़िक और जानदार किस्म का म्यूज़िक होगा आज पंजाबी का। और पंजाबी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि पंजाबी जो है वो कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई,

इसके साथ साथ डेफिनेटली आज हम बात करेंगे पंजाबी पोएट्री के ऊपर भी, और उसके अलावा जो सूफीज्म है उसके ऊपर भी आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। साथ हम हल्ले गुल्ले वाले म्यूजिक होंगे पंजाबी के। डेफिनेटली जब भी बात होती है पंजाबी के अंदर हमारे जहन में बहुत सारे पंजाबी के म्यूजिक और पंजाबी की पोएट्री भी आ जाती है।

बाला जी, आज 18 अगस्त है और आज मेरे एक दोस्त की बर्थडे है, उसको भी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल अलियान साहब, आपको हैप्पी बर्थडे, और उसके अलावा जिन जिन लोगों की आज हैप्पी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे टू यू जी, या जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, या जिन लोगों ने आज मोहब्बत की बुनियाद रखी, अपने रिलेशन की बुनियाद रखी, उन लोगों को भी मुबारकबाद। अगर आप लोग खुशबाश हैं अपने रिलेशन को लेके तो तब आपको मुबारकबाद, अदरवाइज अदरवाइज क्या ही कह सकते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो डेफिनेटली आप एक कंसल्टेंट हायर करें और अपने रिलेशन को दोबारा से बहाल करने की कोशिश करें। कंसल्टेंट वो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी ये काम कर लेता हूँ, छोटे मोटे जुगाड़ ला ली देने।

0: बहरहाल जी, आज का जो टॉपिक है हमारा पंजाबी का है, तो डेफिनेटली ऐसी आज पंजाबी से भी गल करांगे। और आज ऐसी लाजमी मेरा एक क्वेश्चन भी होएगा कि मनू तुसीं अपनी राय दे नाल आगाह करियो कि अज कल जिहड़ी पंजाबी है, क्या वह अगली जनरेशन तक ट्रांसफर होएगी या सिर्फ एक घर के अंदर बोलने वाली जुबान ही रह गई है और सिर्फ महदूद हो गई है। क्योंकि जिहड़ी अगली जनरेशन है वह तो उर्दू मीडियम चल रही है या इंग्लिश, डेफिनेटली हमारी मुख्तलिफ जुबानें हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं, तो जाहिर है जिस कंट्री के अंदर हम रह रहे हैं, जिस कल्चर के हम अंदर रह रहे होते हैं, तो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन जिहड़ी साडी मां बोली जुबान है जी पंजाबी, उहनूं वी ते नाल नाल लैके चलना। जदों भी मिठी जुबान की गल हुंदी है तो मेरे दिन च सब तो पहले साडी अपनी मूँह बोली जुबान, मां बोली जुबान पंजाबी ही आंदी है। तो जिन्हें भी अपनी मुहब्बत का इजहार करना हो, यकीन करो तुसीं पंजाबी च अगर करोगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ी चस आएगी। या गुस्से का इजहार करना हो तो ऑटोमैटिकली पंजाबी के अंदर निकल जाता है। क्योंकि मैंने कभी भी गुस्सा करते हुए ये नहीं देखा कि पंजाबी में गुस्सा डिलीवर हो रहा हो। डेफिनेटली मेरे जब दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी जब भी गुस्सा करते हैं वो फ्लो बनता बनता इंग्लिश से भी वो पंजाबी में आ जाते हैं। किसी भी जुबान में हमारी बात हो रही हो तो वो करते करते जब गुस्से में बात हो रही हो तो वो जी पंजाबी के ऊपर आ जाते हैं, जाहिर है। और सबसे मेन जो बंदे हैं वो अपने माँ जी और बाप जी, ठीक है, वो पंजाबी से ऑटोमैटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਔਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ 01157100971। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1: ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤੀ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
0: ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਤੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਰੇਡੀਓ ਪਤਾ 97.1 FM ਨੋਟਿੰਗਮ ਤੋਂ।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फॉर द 97.1 FM नोटिंगम से। इस वक्त हम बराह रास्त आपकी समातों की नज़र हैं। आज का प्रोग्राम जो है बड़ा स्पेशल है। थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम जो है अपनी बड़ी मीठी जुबान पंजाबी के ऊपर बात कर रहे हैं, पंजाबी से गालबी कर रहे हैं नाल नाल।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। रेडियो फतह 97.1 एफएम से आप सुन रहे हैं मुझे यानी राणा अरसलान अली को। कितना प्यारा अंदाज था सिद्धू मूसे वाले का मोहब्बत दा इजहार करन दा, कि तेनू देखदा मर जा जी भर के ते हथ फड़ के। अगर मैनू मौका मिलिया मुहब्बत का इजहार करन दा, तो मैं भी डेफिनेटली इसी तरह करांगा। मैं भी कहांगा कि काश मैं भी कह सकां, बल्कि कि तेनू देखदा मर जा मैं जी भर के ते हथ फड़ के। बिल्कुल तुहानू ही कहना चाहना, चलो जो मौका मिलिया कह देंगे। फिर तुहाडी जी प्यारी जी जिहड़ी स्माइल है भी देखांगे। वरल जी, पंजाबी सुन के तुहाडे ज़हन च सब तो पहले किहड़ी चीज़ आती है ये दसो जी। एक मतलब इमोशन आता है या फिर एक सिर्फ लैंग्वेज ज़हन च आती है? मैं तो जिस टाइम भी जबान पंजाबी सुनना, मेरे ज़हन च सब तो पहले एक इमोशनल जिहड़ा टच है वो आ जाता कि कोई कितने अपना पंजाबी वीर भरा होएगा, बेशक वो चढ़दे पंजाब दा होए या लहिंदे पंजाब दा होए। जुबान जिहड़ी है वो साडी इक ही है, इमोशन भी साढ़े एक ही ने जुबान नू लैके। बहरल जी, जिथे सिद्धू मूसे वाले की असं गल करिए उत्थे साढ़े दिन च करण ओजला भी लाजमी आते हैं, तो करण ओजला ने भी अपना किरदार बखूबी अदा किया है पंजाबी जुबान नू जिंदा रखने वास्ते। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जी

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रानाड सलानली और आप सुन रहे हैं रेडी फदा 97.1 FM। अभी आप सुन रहे थे करण ओजला को और करण ओजला का गाना था चिट्टा कुर्ता तुल बेड़िया खून नालवे। अच्छा, इस गाने के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं पंजाबी के जिनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यानी कि मुझसे एक दोस्त ने पूछा इसके जो है ना ट्रांसलेशन के लिए, तो इसके बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं इसके अंदर इस तरह के हैं जो आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ओवरऑल भी आप देखें पंजाबी के जो लफ्ज़ हैं बहुत सारे इस तरह के हैं जिनको आप इंग्लिश के अंदर या किसी और ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है हमारे यहाँ पंजाबी में, कहते हैं ना कि एक ही जुगाड़ लाए, या किसी भी काम नू कोई काम ना हो रहा हो तो कहते हैं जुगाड़ ला लो भाई जी, ठीक है वक्ती तौर पर दा कोई जुगाड़ कर लो एक ये। फिर उसके अलावा कंजूसी का तो मेरे ख्याल से है ही है, अपोजिट मिल जाता है। उसके अलावा खर्चा पानी भाई जी इधर नहीं अजकल पता चलिया, आज तक नहीं पता चलिया। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो पंजाबी की ये है कि पंजाबी एक मीठी ज़ुबान है, जहाँ पर भी पंजाबी की बात होती है वाह वाह हो जाती है।

जी पंजाबी की बात हो तो डेफिनेटली हमारे जहन में एक मेले जो हैं वो भी आते हैं, हमारी सूफीज़म जो है वो भी आ जाती है, और पंजाबी की जब भी बात होती है तो पंजाबी गाने भी हमारे जहन में होते हैं। तो एक पंजाबी सॉन्ग है हमारी आंखों के सामने इस वक्त, वो शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि उस पार एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक भी है। तो आपने कहीं नहीं जाना इस गाने के उस पार, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, और उस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी समातों की नज़र हमारी आवाज़ होगी, हमारी मतलब मेरी, मेरी मतलब राना अरसलान अली की। तो मिलते हैं जी इस गाने के उस पार, एक कमर्शियल ब्रेक है, उस कमर्शियल ब्रेक के उस पार दोबारा से मुलाकात होगी आपसे। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो पता 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: हिट म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, पोएट्री, न्यूज एंड हेल्थ, ऑल अंडर वन रूफ। आवर रेडियो स्टेशन सरपासिंग ऑल बाउंड्रीज एंड कीपिंग यू कनेक्टेड। इट्स रेडियो फजा 90.8

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फदा 97.1 FM नोटिंगम से इस वक्त बरह रास्त। अभी आप सुन रहे थे काका का गाना मिट्टी दे टिब्बे, और इस गाने के अंदर भी पंजाबी की जो खुशबू है वो हमें महसूस हो रही थी। वैसे पंजाबी की अगर बात करें तो आप कौन सी पंजाबी जो है वो यूज़ करते हैं घर में बोलने के लिए, अगर आप बोलते हैं अभी तक? क्योंकि पंजाबी के अंदर भी बहुत सारी जो है वो ज़ुबानें हैं, इकसाम है इसकी, जैसे कि शाहपुरी है, पोठवारी है, उसके बाद दुआबी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ज़ुबानों की इकसाम है पंजाबी के अंदर। ते तुसी दसो जी, तुसी केड़ी पंजाबी बोलते हो? और इस तो अलावा जी, अगर तुसी दसना चाहते हो सानू, तुसी इस तरह करना है, मोबाइल चुक लेना है और डायल करना है 01157100971, साडा राबते दा नंबर। इस नंबर दे नाल तुसी साडे नाल राबता कर सकते हो। और अगर तुसी ड्राइव कर रहे हो तो तुसी बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ करना जेहड़ा इलीगल है। इलीगल हो भी जाए तो भी ये जी चीज़ है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट नहीं है, क्योंकि दुनिया उपर मेजोरिटी जी है वो एक्सीडेंट सिर्फ इस वजह तो करवा पैंती है क्योंकि जी वो ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज कर रहे होंगे, उन्होंने ध्यान जो उन्होंने तवज्जा जी है मोबाइल के उपर चली जाती है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहवागा जी इस तरह का कोई भी हैपन होए, अल्लाह ना करे। बरल जी, खूबसूरत सा ट्रैक है हमारी आंखों के सामने, आपको ये गाना सुनना पड़ेगा। इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं आवाज़ की दुनिया में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं जी दलेर पाजी के इस गाने के बाद। ये गाना बड़ा अच्छा है, गाना सुनिए। गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात करते हैं।

बिल्कुल जी, राजा मियां छड़ दो यारी, चंगी नहीं इश्क बीमारी। अखियां हो जन चार ते पल्ले कुछ नहीं हो रहना। वाह जी क्या बात है दिलेर मेहंदी पाजी की। और इस गाने के साथ ही टाइम हुआ चाहता है जी, क्या टाइम हो गया, 3:10 हो चुके हैं और वक्त का पता ही नहीं चल रहा कितनी तेजी के साथ ये वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है। वैसे जी आपस की बात है कि पंजाबी में आपके आपको कौन सा ऐसा लफ्ज़ है, केड़ा ऐसा लफ्ज़ है जो पंजाबी का तुहानू चंगा लगता है, केड़ा ऐसा लफ्ज़ है जो तुम बयान करते हुए एक खुशी महसूस करो, अगर पंजाबी से तुहाडे कोल कोई बंदा पूछ ही ले कि केड़ा पंजाबी का लफ्ज़ है वो पसंद है तुहानू। फॉर एग्जाम्पल सोना, चंगा, ठीक है, इस तरह के लफ्ज ने जड़े बंदे पंजाबी से कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है, अपना पिंड है, अपनी मिट्टी है, ठीक है, दिल है, इश्क है। वैसे तुहानू कभी ख्याल आए पंजाबी दे, पंजाबी च भी ख्याल आते हैं इंसान को, जिस तरह जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमें ख्याल आ रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब होता है, ख्याल होता है, जो ख्याल होता है वो पंजाबी के अंदर आए तो कैसा लगे। वैसे प्यार दियाँ जड़ियाँ उडारियाँ ने ख्याल दियाँ, ख्याल दे विच भी पंजाबी दी जड़ियाँ प्यार दियाँ उडारियाँ वो किस तरह दियाँ लगन। बहरहाल जी जो कुछ पंजाबी वास्ते इन्हां सिंगरां ने कर दिता है दैट्स इनफ, क्योंकि पंजाबी दे विच अगर देखा जाए जिस तरह पंजाबी दे सोंग जड़ा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज ये ट्रेंड क्यों नहीं करती, मैनू अज तक समझ नहीं आई। पंजाबी जितनी पुरानी होंदी जा रही है उतनी स्ट्रोंग नहीं होंदी जा रही, मतलब पंजाबी नू असी लिमिटेड कर दिता है परसेंटेज दे हवाले नाल कि कितने परसेंट बोली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सानू पंजाबी जिहड़ी है साडे घरां दे विच गाणियां च ही मिलती है, यह कितनी हकीकत है तुसी भी दस्सो। बहरहाल जी पंजाबी का बड़ा खूबसूरत ट्रैक है जी, इस गाने दे उस पार दोबारा मुलाकात करांगे, उडारियां गाना है जी और सतिंदर सरताज जड़े ने जी इसे लेखक भी ने ते गायक भी ने, बड़ा खूबसूरत गाना है, मोहब्बत का गाना।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप अभी सुन रहे थे उड़ारियाँ, मैनू प्यार दियाँ चिड़ियाँ उड़ारियाँ। ये गाना है सतिंदर सरताज का, कितनी खूबसूरत पोइट्री है, और इसी तरह से ये गाया भी गया, और उसी तरह की खूबसूरत ये शायर भी हैं हमारे सिंगर जो हैं। पंजाबी कितनी सोहनी जुबान है जी। वैसे जिस टाइम मैंने सुनने तो सुकून लग जाता है। और तुसी ये दसो कि तुसी पंजाबी जिहड़ी है किहदे कोलों सीखी, यानी कि तुहानू घर दे विच पंजाबी किने सिखाई, और तुहाडी जिहड़ी अगो जनरेशन आने वाली जनरेशन है उहनू तुसी ये डिलीवर कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। वैसे तो पंजाबी वास्ते जिहड़ा कम पुराने शायर कर गए वो मेरे ख्याल नाल हुण दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है। अगर पुराने शायरों की गल की जाए जी, बिल्कुल पुराने शायरों से बाबा फरीद शकरगंज साहब ने, उन्होंने बड़ा इस विच रोल प्ले किया अपनी पोएट्री के नाल। शाह हुसैन ने, सुल्तान बाहू ने, बुल्ले शाह ने और वारिस शाह ने। वारिस शाह का एक शेर है, शेर जिहड़ा वह भी असीं शामिल करांगे प्रोग्राम दे विच। वारिस शाह कहिंदे ने कि बड़ा इश्क इश्क तू करदा है, कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल ते सही, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदी सानू अंदरों फोल दे सही। वाह वाह, क्या कहने जी वारिस शाह के। ये पोएट्री जिस टाइम इस इन्हां शायरों ने इस पोएट्री का, पंजाबी पोएट्री का आगाज़ किया, तो ये वो टाइम सी जी जिस टाइम पंजाबी नूं कोई जानता नहीं सी, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पंजाबी पोएट्री नूं, और फिर इस पंजाबी जुबान का वो रूज होया जिसकी वजह तो अज असी पंजाबी ही बोलते हाँ। इस विच कोई शक नहीं है कि पंजाबी जुबान नूं हाइप देने वाले, पंजाबी जुबान नूं उस लैवल ते लैके जाण वाले, जिस लैवल तो बाद पंजाबी जुबान इतनी ज़्यादा फैली, उहदे विच इन्हां शायरां दा बहुत ज़्यादा रोल रहा है।

0: वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडी फॉर द 97.1 एफएम। टाइम हो चाहता है जी 3:25 का और कुछ ही सेकंड के बाद एक कमर्शियल ब्रेक है। इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार दोबारा से आपसे मुलाकात होगी आवाज की दुनिया में। फिर हम बात करेंगे दोबारा पंजाबी के ऊपर। पंजाबी की आज हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ, पंजाबी का है। और हम कोशिश कर रहे हैं पंजाबी के आज मेन जो चीज़ें हैं, पोएट्री है, सिंगिंग है, उसको आज के हम शो के अंदर कवर करें। बहुत कुछ आज हमने डिस्कस किया, बाकी जो रह गया वो इंशाल्लाह आगे आने वाले सेगमेंट में करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राणा अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। इस वक्त लोग नोटिंगम से लाइव। मेरा और आपका जो साथ है वो चंद ही लम्हों का रह गया है और हमें पता ही नहीं चला जी वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। आज हम बात कर रहे थे पंजाबी ते, साड़ी माँ बोली जुबान जड़ी पंजाबी है उहदे उत्ते गल कर रहे सी। वैसे पंजाबी ते इंग्लिश मिक्स होके की लफज बने, वैसे आपस दी गल है। बहरहाल जी, इस अलावा असी गल कीती अज पंजाब दे कल्चर दे उपर, पंजाबी मेलियां दे उपर भी। होपफुली तुसी ए अज दा जिहड़ा शो है ओ इंजॉय कीता होएगा और तुहानू मजा आया होएगा। नेक्स्ट वीक मिलांगे इंशाल्लाह जी एक नए शो दे विच, एक नए टॉपिक दे नाल, सोहणियां सोहणियां गल्लां दे नाल।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Ready to move.
8: It's all about the beats.
9: Wow, FM.
10: Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

समिट प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले एक प्यारा सा गीत आप सबको सुनवाते हैं। बहुत दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। रेडियो फजा 97.1 FM से मैं हूँ फाखरा मिर्जा और आप सबको खुलूस भरा मोहब्बतों भरा सलाम पेश करते हुए ये यकीन दहानी करवा रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला अभी आप रेगुलर हमारे प्रोग्राम सुन सकेंगे और उन प्रोग्रामों में आपकी शिरकत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग शिरकत करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं और फिर हमारी आवाज़ को आपके सुनने से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी फिर दोबारा हमें उस सीट पर वापस लेके आती है। जिंदगी को रोकने की जितनी मर्जी कोशिश इंसान कर ले, जितनी मर्जी बैगिंग करें, रोकें, हाथ जोड़ें, लेकिन जिंदगी एक सर्टन टाइम तक हमारे साथ रहने के बाद आहिस्गी से हमारा हाथ छोड़कर आगे बढ़ जाती है। सो जो लम्हे, जो घड़ियां, जो साल, जो महीने, जो हफ्ते हमें मिले हैं उनको जिएं और भरपूर तरीके से, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।

0: और जी जिंदगी को रोकने की कोशिश में थम जा, जिंदगी थम जा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन सांस की डोरी जब टूटने लगती है तो रोकने के बावजूद आप नहीं रोक पाते।
1: लड़कियां घुमाती हैं और फिर
0: सो जो वक्त मिला अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ भरपूर गुजारिए। हर दिन को इस तरह से देखिए कि बस आज का दिन हमारा है, और जो हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको वक्त देना है, उनके साथ खूबसूरत से लम्हात को यादगार बनाना है। ये सब सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए रेडियो फसा को, और नंबर हमारा जैसे कि आपको बता रहे हैं 01157100971, और डैब पे आप सुन सकते हैं, और उसके बाद इंटरनेट पर ओल्ड डब्ल्यू डॉट रेडियो फजा डॉट ओ आर जी डॉट यू के।

और जी, वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि वक्त कितनी तेज़ी के साथ हमारे हाथों से निकल जाता है। वक्त वीर और मुख्तसिर नहीं होते, सोचने की बात है, बल्कि सोचने से ज़्यादा समझने की बात है कि वक्त कभी भी तवील और मुख्तसिर नहीं होता। दो घंटे का शो होता है, जब हम शुरू करते हैं तो ये सोच करके दो घंटे एक लंबा टाइम है, लेकिन वक्त तेज़ी से गुजर जाता है और दो घंटे हमारी ज़िंदगी से कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वक्त तवील और मुख्तसिर नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल उसे मुख्तसिर या तवील बना देता है। हमारे यहाँ बहुत से माशरती मसाइल वक्त की वजह से जन्म लेते हैं। कभी किसी के पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है, उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता, और फिर क्या कि उसका दिमाग इधर उधर की फजूल किस्म की सोचों में उसको उलझा कर सारा वक्त उससे छीन लेता है। लेकिन वहीं पर वो लोग जो वक्त की कदर करना जानते हैं, जिनके हाथ में कोई हुनर होता है, जो वक्त से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, जो वक्त की कदर जानते हैं, या यूं कह लें कि किस्मत जहां पर उनका साथ देती है, वो लोग वक्त को पूरी तरह से कैश करते हैं और वक्त से पूरा पूरा फायदा उठाकर फिर वक्त से शिकायत किए बगैर उसे गुड बाय कह देते हैं। सो आप लोग वक्त को कैसे गुजारते हैं? वक्त जो गुजर गए लम्हे होते हैं उसका एहतराम कैसे करते हैं? समीन, एक सोचने की बात ये भी है कि वक्त का एहतराम जब तक हम नहीं करेंगे, वक्त कभी भी हमारा साथ नहीं देगा।

और जी आप सबको वेलकम कह रही हूँ, खुश आमदीद। और जिन लोगों ने अभी अभी सुनना शुरू किया है उन सबको अस्सलाम वालेकुम और हेलो हाय, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून। यकीनन बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। अकीदों और मोहब्बतों के रिश्ते हैं, आवाज़ के रिश्ते हैं, और ये रिश्ता बहुत सालों से है हमारा आपके साथ। हवा के दोष पे जब भी हम आवाज़ अपनी, क्या कहना चाहिए कि हवा के दोष पे जब भी हमारी आवाज़ गूंजती है, बहुत से साथी आके हमें बताते हैं कि हमने आपको सुना, हमारे शो को सुना, रेडियो फ़ज़ा के तमाम प्रेजेंटर्स को सुना, उनका साथ दिया। और कहीं पर जब हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है तो हमें आप लोग इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आप लोग हमें सुनते हैं। सो हमारा और आपका आवाज़ का रिश्ता है। दो घंटे हम हर हफ्ते आप सबके नाम करते हैं और ज़िंदगी के ये खूबसूरत कीमती लम्हे इस यकीन के साथ कि सुनने वाले लोग बहुत कीमती हैं, नायाब हैं। आबिदा परवीन ने कमाल खूबसूरती से गाया था कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अहले ज़माना कदर करो, नायाब ना हो कामयाब हैं हम।

मैं तो जब भी शो शुरू करती हूँ तो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है मुझे। यकीनन आवाज का ये रिश्ता हमेशा चलता रहेगा जब तक सांस की डोर हमारे साथ बंधी है, और हमें जब तक वक्त का एहसास नहीं होगा हम अपने आप को किसी भी जगह ठहरा हुआ रुका हुआ महसूस करते रहेंगे, जैसे कि गर्दिश अय्याम कभी रुकती नहीं है, जमीन 24 घंटों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करके दिन की रोशनी और रात की तारीकी हमें दिखाती रहती है। और हम भी इस जिंदगी को इसीलिए खूबसूरत कहते हैं, जिंदगी खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत।

उदास करने वाला है ना। कोई किसी को क्यों अलविदा कह जाता है। आइए क्यों ना मिलकर कुछ ओल्ड सॉन्ग्स जो हैं सुनते हैं, जिसकी फरमाइश अक्सर की जाती है और बहुत से लोगों को ये पसंद होते हैं। सो कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, रफ़ी और लता जी, मुकेश और इसी तरह के बहुत सारे सिंगर्स ने बहुत प्यारे प्यारे से गीत गाए, और वो ऐसे गीत थे जो कि हमेशा अमर रहे, हमेशा हमारी यादों में। क्या आने वाली जनरेशन जो है वो भी इन गीतों को सुनती रहेगी और महसूस होती रहेगी। उन्हीं में से ये प्यारा सा गीत आप सबके नाम जी में आता है कि क्या करें, बहुत सारी बातें, और बातें तो हमेशा हम तसल्ली ही से करते हैं। और ये प्यारा सा गीत तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं।

और जी ये गीत तो एक ही लफ्ज को बार बार दोहरा रहे, क्यों? सो जी हम दूसरी साइड पर जाते ही स्टे करें हमारे साथ और कुछ भी कहना चाहें तो जरूर इस नंबर पर शामिल हों जो कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 01157100971। जी हाँ, और इंटरनेट पर www.radiofaza.org.uk पर आप हमें सुन सकते हैं।

और ये प्यारा सा गीत जा रहा है जी अली डरबी से, आप सुन रहे आपकी पसंद का गीत आपके तमाम दोस्तों के लिए और रेडियो फजा की तमाम टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआएं। नबीहा आप भी सुन रहे हैं हमें, टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपने अपना मैसेज भेजा, सो नबीहा आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक कहते हुए नबीहा आपने भी इस गीत को पसंद किया। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, क्या उम्दा शायरी है और खूबसूरत आवाज।

जी राहत फतेह अली खां की खूबसूरत आवाज, बोलना हल्के हल्के और फिल्म थी जी झूम बराबर झूम। धागे तोड़ लाओ चांदनी से रू नूर के, कितना खूबसूरत शायर का ख्याल है, है ना। जब आप कभी शायरी, उम्दा शायरी पे गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि लिखने वाले की सोच कहाँ से कहाँ गई और क्या सोच डाला उसने। जैसे कि एक लफ्स, एक लाइन मैंने पढ़ी कि जो लोग अपनी जात के खंडरों में अजनबी रास्ते तलाश करते हैं, दरअसल वो जिंदगी को खुद तन्हा बना लेते हैं। कितना खूबसूरत जुमला है कि जो लोग अपनी जात के खंडरों में अजनबी रास्ते तलाश करते हैं, दरअसल वो जिंदगी को खुद तन्हा बना लेते हैं। सो लिखने वाला कहां से कहां अपनी सोच को ले जाता है और पढ़ने वाला हैरान रह जाता है उस सोच पर। इसीलिए कहते हैं ना कि सोच का फिर कोई दरवाजा खुला आखिरी शब, और कौन करता है वफा अहदे वफा आखिरी शब। समन पिछले दिनों 14th अगस्त का प्रोग्राम, भरपूर प्रोग्राम एक हुआ और अहले नॉटिंगम ने उसमें भरपूर शिरकत की। बहुत से लोग वहाँ पर आए उस शो को देखने के लिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जज्बा हुब्बुल वतनी की खुशबू ने खींच लाई और वो लोग आए। भरपूर उन्होंने इजहार किया वतन से मोहब्बत का। और ये वो दिन होता है कि पता नहीं जज्बात क्यों उमट कर आ जाते हैं जब आप वतन का कौमी नगमा सुनते हैं, अपने वतन का तराना सुनते हैं, तो बेख्तियार आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग खड़े थे और हमें कहा गया कि अभी वतन का कौमी तराना बजने लगा है, सब लोग अपने दिल पर हाथ रख लें और अदब से खड़े हो जाएं। और जो ही तराना शुरू हुआ तो बस पता नहीं क्या हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शायद वो इतने सालों की जुदाई, वो इतने साल वतन से दूरी, अपनों से बिछड़ने का गम, सब कुछ अंदर एक हलचल मचाए रखता है, लेकिन फिर जरा सी मट्टी नरम होती है तो पता चलता है कि कितनी जरहेज थी ये मट्टी अपने वतन की मोहब्बत, अपनी धरती से प्यार। वतन के बहुत सारे मिली नगमे गाए गए और हर नगमा जब सुना तो जज्बात और एहसास तेजी से मचल कर बाहर आए। तो हर शख्स की अपनी जगह पर जज्बा हुब्बुल वतनी से इजहार कर रहा था। एक भरपूर प्रोग्राम हुआ, सब ने बहुत इंजॉय किया, अपने मादरे वतन के लिए बहुत सारी दुआएं की, जो बदमनी की फिजा है अल्लाह पाक उसको दूर कर दें, हमारे वतन में अमन और शांति का पैगाम हर तरफ फैले। क्योंकि हम लोग जो अपने वतन को छोड़ते हैं, हमें एहसास होता है कि वतन से दूरी क्या चीज़ है, अपनों से जुदाई क्या है। सो हमारी ढेर सारी दुआएं अपने वतन के लिए, कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि यूं कहूंगी कि सारी दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ है। इंसान चिरिंद परिंद जहाँ पर भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की हिफाजत करे।

0: और जी आपने सुना नुसरत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा कलाम रेडियो फजा 97.1 FM से। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें नंबर भी देते चलेंगे जी, नंबर जरूर नोट किया करें, क्योंकि नंबर नोट करने से क्या होता है कि फासले कम हो जाते हैं और फिर अब मुलाकात जो है वो जरूरत बन जाती है। सो, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ बस बटन के एक क्लिक पे होती है। तो जब भी आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, बटन प्रेस करके किसी से बात करते हैं, तो दूरियां बहुत जल्दी नज़दीकियों में आ जाती हैं। सो, हमारे रेडियो के प्रोग्रामों में भी शामिल होने के लिए आपको 0115 7100971 को डायल करना होगा। हालांकि डायलिंग का सिस्टम कितना खूबसूरत सिस्टम था, एक फ़ोन घर के एक कमरे में होता था या फिर घर के किसी कॉरिडोर में या अपने जो बड़े फादर होते थे उनके कमरे में ही फ़ोन होता था। किसी का भी फ़ोन आ जाए वहीं पे सुनना पड़ता था उसी एक जगह पे खड़े होके, और फिर डायल को जब घुमाया जाता था उसकी एक अलग सी खूबसूरत सी आवाज़ होती थी, और फिर नंबर डायल होने के बाद कितनी घंटियां बजने के बाद अगला जब फ़ोन उठाता तब तक दिल की धड़कने कितनी तेज़ और बेतरतीब सी हुआ करती थी। उस वक्त उस दौर में तो टेलीफोन कॉल सुनना, किसी को करना भी ऐसे था कि जैसे आपका दिल एक एटम बम बन गया, तेज़ तेज़ धड़क रहा है। ऐसा क्यों होता था आप में से भी ज़रूर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। कितने खूबसूरत दौर थे और कितने सादा से लोग थे, छोटी छोटी सी बातों पर परेशान हो जाने वाले। आज का दौर कुछ ऐसा आया है कि एटम बम भी फट जाए तो लोग मज़े कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और वो अपनी ही उस फ़ोन लग रहे होते हैं, अपने फ़ोन मोबाइल जो होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को देख रहे होते हैं। उनके लिए एटम बम का फटना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर मेरे साथ एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइए। और ये जी आवाज़ है नरवेर पन्नू की, तेरे लई मैं लिखिया सी।
1: तेरे लई मैं जो लिखिया
0: सी। और ये यहाँ पर क्यों अटक जाते हैं कि तेरे लई मैं लिखिया सी, क्या लिखा था ये भी तो बताए ना, है ना। कभी कभी हम एक छोटे से जुमले पे क्यों अटक जाते हैं।

और समन किसी फनी खराबी की वजह से ये गीत पूरी तरह से चल नहीं पा रहा, सो उसके लिए माजरत हा है। कोई और गीत आपको सुनवाते हैं, सो स्टे ट्यून इन रेडियो फजा 97.1 FM। जिंदगी खूबसूरत है, यकीन कीजिए कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि हम बयान नहीं कर सकते। स्पेशली इन गर्मियों में तो हमें बहुत खूबसूरत लगी वो गर्मी जिसकी हमें चाह थी। बहुत सालों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और दुआएं भी करते थे। बारिश से हमें बहुत सारी शिकायतें थी, सो बारिश ने हमारी शिकायतों पर कुछ गुस्से का इजहार किया और फिर हमसे रूठ गई। लेकिन रात को कुछ बारिश हुई और सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंड का एहसास हुआ, वो भी अच्छा लगा क्योंकि ज़िंदगी जो खूबसूरत हुई। सो ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए सभी लवाजमात अच्छे लगते हैं।

0: और जी ये प्यारा संगीत
1: मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल।
0: हमने किया जी अलीना आपके नाम लव शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया आपने शिरकत की और अपना मैसेज दिया और गैर मौजूदगी का भी पूछा कि इतने दिन क्यों गैर हाजिर रही। कभी कभी छुट्टियां लेनी पड़ती हैं और हम लोग भी छुट्टियां लेते हैं इसलिए कि थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है और फिर नए सिरे से तैयारी करके हम लोग आते हैं। हम लोग भी आपकी कमी को महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली डरबी से आपने सुना, बहुत शुक्रिया आपका शामिल हुए और हमेशा शामिल होते रहते हैं। और इसी तरह से डॉक्टर फरीद चौधरी आपका भी मैसेज मिला, आप भी शामिल हुए प्रोग्राम में, हमेशा पंजाबी के गीत की फरमाइश करते हैं। और आमों का जो हमने पूछा था कि इस साल अच्छे आम नहीं मिले, तो आपका कहना है जी कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बहुत सारे आम खरीदे एक्सपीरियंस किए लेकिन वो वाली बात नहीं जो पिछले कुछ सालों में हुआ करती थी। पैरल क्या कहते हैं कि आम स्टिल आमों का बादशाह है, जो मर्जी हो जाए उसको बादशाही का लकब दिया गया है और वो बादशाही रहेगा। अभी भी कहाँ पर आम मिल रहे हैं, शायद हमने सुना था कि पिछले कुछ दिनों में लास्ट फ्लाइट जो थी वो आई थी, उसके बाद आम आना बंद हो गए। तो जी ये आमों से इतनी हमारी मोहब्बतें क्यों हैं? कभी मिल्क शेक पिया जाता है, कभी उसकी स्मूदी बनाई जाती है और कभी डिफरेंट किस्म के डिजर्ट बनाकर उसमें आम की प्यूरी यूज की जाती है। ये मैंगो हमें क्यों पसंद है इतना ज्यादा और इसको इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया कि ये आम का बादशाह है? आप अगर सोचें तो आम की बहुत सारी चीजें बनती हैं जब कच्चा होता है, तो लड़कियां उसको तोड़ तोड़ के खाती हैं और आधे से ज्यादा दरख्त खाली कर देती हैं और उसके ऊपर बहुत सारे गीत भी बने हुए हैं पंजाबी के गीत, जैसे कि एक गीत मुझे याद है कि वो था कि अंबियां दे बूटियां नू लग गया पूरनी, है ना, सचिया मोहब्बत ने चन होया दूर नी, आई थिंक ऐसे ही था। और फिर जब कच्ची कच्ची से वो अंबियां लगती हैं तो उनको लड़कियां तोड़ तोड़ के खा जाती हैं, जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो बड़ी बूढ़ियां माएं हमारी उनको तोड़ के उनका अचार डालती हैं, फिर उसी की चटनी बनाई जाती है और फिर जब पक जाता है तो फिर हर घर में आम का राज होता है, बादशाह सलामत हर घर में मौजूद होते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को सुना कि उन्होंने कहा हो जी कि हमें आम पसंद नहीं है। हाँ, आम खाने के कुछ लवाजमात हैं, ये एक ऐसा फल है कि जितनी मर्जी एहतियात से इसको खाया जाए लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं अपने रस से गंदा कर देता है, आपके कपड़ों को, आपके मुंह को, आपके हाथों को। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो आम को किसी महफिल में बैठ के नहीं खाते बल्कि आम को कहीं अलग से बैठ के एंजॉय करते हैं। सो जी क्या है कि आम खाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प होता है। लोग उसको लाते हैं, धोने के बाद उसको ठंडे पानी में रख दिया जाता है, जब खूब ठंडा हो जाता है कुछ दोस्त बैठकर उसको खाते हैं, घर वाले बैठ के, कभी उसको काट के पेश किया जाता है, कभी उसको दरमियान से काट के दो टुकड़े करके, और कभी मेहमानों को खाना खिलाने के बाद आम पेश किए जाते हैं। बहुत से लोग एक दूसरे के घर जाते हुए आम के मौसमों में तोहफतन आम भी लेके जाते हैं और मैं आम जब भी खाती हूँ मैं उसका छिलका उतार के उसको छुरी से काट के कांटे के साथ, क्योंकि मुझे उसका वो जो रस निकलता है, वो जो गंध पड़ता है, उससे बड़ी एक उलझन सी होती है। और स्पेशली किसी के सामने तो मैं कभी भी आम को जिस तरह से खाया जाता है मैं उस तरह से कभी भी नहीं खा सकती, क्योंकि ये थोड़ा सा, इसको बादशाह का खिताब तो दिया गया लेकिन उसके साथ साथ ये थोड़ा सा बदतमीज फल भी है, एक छोटे बच्चे की तरह आपको कहीं ना कहीं से

अंबर या शायद उनका मूड इतना अच्छा नहीं था। सो जी ये तो थे हमारे आम साहब जिनकी बहुत सारी बातें हमने की। इतनी बातें तो शायद हमने प्रोग्राम में किसी और चीज की नहीं की जितनी कि हम आम को आम के बारे में की, फलों का बादशाह।

तो जी एक और गीत की जानिब आपको लेके चलते हैं और यकीनन ये वाला गीत भी आपको अच्छा लगेगा। इस प्यारे से गीत को जी हाँ डॉक्टर फरीद चौधरी आपके नाम करते हैं और यकीनन ये प्यारा सा गीत आपको अच्छा लगेगा क्योंकि एक बार आपने इसकी फरमाइश की थी। सो ये प्यारा सा गीत आपकी जानिब से आपकी टीम के लिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर शामिल हुआ करें।

जी एक सवाल है, क्या यही प्यार है, है ना? प्यार है। और ये जी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं और वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। कभी कभी होता है ना कि वक्त एक जगह पे रुक जाता है, गुजरता नहीं है, और कभी कभी वक्त को पर लग जाते हैं और वो इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ पे चला गया। इंसान वक्त को रोकता ही रह जाता है। तो जी ये प्यारा सा गीत आपने सुना रेडियो फजा 97.1 FM से, और अगला गीत यकीनन बहुत ही प्यारा सा गीत आपको अच्छा लगेगा, और वो गीत ही क्या जो अच्छे ना लगे। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो फजा 97.1 FM, और कुछ भी कहना चाहें तो ज़रूर शामिल हुआ करें, अपनी राय का इजहार, प्रोग्राम में शिरकत, कोई मैसेज, किसी के नाम कोई गीत, कोई पैगाम, दिल में छुपी वो बात जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, लफ्जों की सूरत में, शायरी की सूरत में, गीतों की सूरत में, जी हाँ, कन्वे कर सकते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना एक प्यारा सा क्लासिकल गीत था जो कि अपने वक्त में भी मशहूर रहा, और आज भी जब इस गीत को सुना जाता है तो ये गीत अपनी जगह पर एक खूबसूरत मुनफरिद सा गीत है। फिल्म आशिकी का गीत था। और राहुल रॉय और अनु रोगवाल, जी हाँ, समझिए वो गीत है जो कि बहुत मकबूल हुए, बहुत हिट हुए, और ये फिल्में भी बहुत पॉपुलर थी। लोगों ने इन फिल्मों को बहुत देखा सिनेमाओं में, घरों में, और इन गीतों को भी बहुत बहुत सुना लोगों ने, लंबे सफ़र जो उनमें, घरों के अंदर, दोस्तों की महफिलों में। वो दौर नहीं था कि जब लोग किसी को गीत सेंड कर सकते, सो लोग कहीं पर बैठ कर सुना करते थे, क्योंकि मीडिया उस वक्त इतना ज्यादा फास्ट काम नहीं कर रहा होता था। किसी से जज्बात का इजहार करने के लिए भी लोगों को हफ्तों बल्कि महीनों इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो दौर खतों का दौर था,

0: और जी ये प्यारा सा गीत आपने सुना रेडियो फजा 97.1 FM से। सामने कुछ मैसेजेस जो हैं वो भी आ रहे हैं जो कि शामिल करेंगे। एक मैसेज हमें यूएसए से आया और गुल उनका नाम है, उन्होंने ये मैसेज
1: जी भेजा। मेरा मैसेज तमाम लोगों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अजीज़ो करीब के लिए है, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें और अच्छे अच्छे काम करें, ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएं जितना बना सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाएं और मिलजुल के रहें, नफ़रतें दिल से ख़त्म कर दें। ये मेरा मैसेज है सबके लिए।
0: बहुत शुक्रिया, इतना खूबसूरत मैसेज गुल का आया जो कि यूएसए से हमें सुन रहे हैं इस वक्त, और उन्होंने ये मैसेज भेजा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। और जी अली, बहुत शुक्रिया आपका, उस डॉक्टर फरीद चौधरी आपका, अलीना आपका, गुल आपका और फरीदा आप सुन रही हैं हमें, अभी अभी आपने ट्यून इन किया, कहीं पे सफ़र पे जा रही हैं, बहुत शुक्रिया। सो मैसेज करने के लिए 01157100971 पर आप भी मैसेज कर सकते हैं, ऑन एयर शिरकत कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है फ़ोन को डायल करने के लिए तो भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं, उस दिक्कत को भी दूर किया जा सकता है। मुझे कहते हैं फाहरा मिर्ज़ा, हलूस भरा मोहब्बतों भरा सलाम, जो कि अभी सुन रहे मुझे।

जी हाँ, पंजाबी का गीत आपने सुना और इस गीत की हमें फरमाइश आई थी ताहिर, आपने की और आपने इस गीत को सुनना चाहा। बहुत शुक्रिया शिरकत की प्रोग्राम में और शामिल हुए, और उन तमाम लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो कि हमें खामोशी से सुन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि खामोशी की भी एक अपनी खूबसूरत सी सुबह होती है। और जब इजहार करते हैं, बोलते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा था।

0: तो जी, इस वक्त हम स्टूडियो से लाइव अपना शो कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए, इंटरनेट पर लोग सुनते हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी लोग सुन रहे होते हैं, स्पेशली गाड़ियों के अंदर बहुत से लोग सुनते हैं। यकीनन हमारी रेडियो फिजा की ये लाइव ब्रॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही है। 01157100977। आज का ये शो बहुत दिनों के बाद आपको सुनने को मिला, क्योंकि कुछ दिनों के लिए हम हॉलीडेज पे थे। और ये प्यारा सा गीत उन तमाम लिसनर के नाम जो कि खामोशी से सुन रहे हैं, किसी गहरी सोच में हैं, कुछ सोच रहे हैं, मौसम का सोच रहे होंगे कि मौसम इतना गर्म कैसे मिल गया, और फिर सर्दियों का सोच करके सर्दियों का इस्तकबाल कैसे करेंगे। और ये प्यारा सा गीत आप सब लोगों के लिए ही है।
1: क्या मुझे तुम बताती?
0: अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा पर फिल्म आया गया है,
1: तुम्हारी खता है।
0: और जिस सोनू निगम की खूबसूरत सी आवाज,

जी सोनू निगम की प्यारी सी आवाज आपने सुनी रेडियो फजा 97.1 FM से, और बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे हैं। और ये प्यारा सा गीत हमने उन्हीं सभी लोगों के नाम किया जो कि खामोशी से हमें सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। उमर, आप सुन रहे हैं हमारा शो इस वक्त, और आपने बताया जी कि आवाज़ जो है वो क्लियर क्रिस्टल की तरह आ रही है। बहुत शुक्रिया, सुन रहे हैं आप भी। हमारी अपनी रेडियो फ़ज़ा की टीम जो है वो भी हमारे शो को सुन रही है। बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों जो मैंगो थे उनके बारे में बात की कि अच्छे आम जो है वो इस दफ़ा नहीं आए, और बहुत से लोगों को शिकायत रही कि इस दफ़ा मज़े के आम नहीं मिले। हालांकि लोगों ने बहुत सी जगहों से, बहुत से शहरों से, और स्ट्रीट पर जो वैन्स खड़ी होती हैं उनके आम तो बहुत मशहूर हैं कि वो बहुत अच्छे मैंगोज़ बेचते हैं।

लेकिन इस बार उनके सेल किए हुए मैंगोज भी उतने अच्छे नहीं निकले। सो एक बार हमने एक सवाल किया था कि मैंगो मैन का मतलब क्या है, मैंगो मैन का मतलब क्या है, ये हमने पूछा था। बहुत से लोगों को पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे कि मैंगो मैन का मतलब क्या है और ये मैंगोज जो हैं आम, ये इतने लोगों को पसंद क्यों हैं। हर फॉर्म में लोग आम को खाना चाहते हैं। और एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आज तक नहीं सुना कि आम के अंदर कभी कीड़ा निकला हो। क्या कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने आम काटा हो और उसके अंदर से कीड़ा निकला हो? जबकि मुझे पता है कि मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी भी आम के अंदर से कीड़ा निकला हो। सो इस चीज़ से तो अंदाज़ा हुआ कि जो कीड़े हैं उनको आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है।

और इससे पहले कि वो अपना नाम बताएं, हम आपको बताते हैं कि जी ये आवाज़ है किशोर कुमार की। और अब आप बता सकते हैं कि सागर जैसी आंखों वाली आपका नाम क्या है?

तो ये लिबास हमारा दिन भर जो एनर्जी उठाए रखता है, हम जहाँ जहाँ घूमते हैं वहाँ की डस्ट, वहाँ की हवा, हमारे इर्द गिर्द जो बातें हो रही होती हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी उठाए रखता है। सो इस लिबास से अलग होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम दिन के अख्ताम पर, दिन के आगाज पर हम अपना लिबास पहनते हैं और दिन के अख्ताम पर हमें उस लिबास से अलग होकर दूसरा साफ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। वो सादा सा पुरसकून लिबास हो जो हमारे जहन को ऐसे माहौल की खबर दे कि अब ठहर जाना है, हमें रुक जाना है, रात हो गई है, या हमने दिन भर का जितना भी काम काज था वो किया, दिन भर की नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसको दरवाजे के बाहर छोड़ा, घर के अंदर दाखिल हुए, अब दिन के लिबास से

और समीसी के साथ आप सबसे अगले प्रोग्राम में मिलने की इजाज़त पर खुदा हाफिज़ कहेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 5 से 7 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। अपना और अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिश्तों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। इसके साथ ही आपको बताती चलूं कि हमारे बाद उमर अपना प्रोग्राम लेके आएंगे।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beats.
7: Wow, FM.
8: Only tune super hit channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। जी तुसा सुनी जो जी रंगे कश्मीर, तुसा ना अपना शो फ्रॉम योर लोकल रेडियो स्टेशन इन नॉटिंगहम, रेडियो फिजाद 97.1 FM। रेडियो फिजा 97.1 FM स्टूडियो तो असं तुसें खिदमत की इजाजत हाँ जी। उम्मीद करने तो सारे ठीक ठाक हो। सो यू कैन लिसन टू अस लाइव ऑन 97.1 FM, ऑल्सो ऑन डब रेडियो एंड ऑन योर लोकल फ्रीक्वेंसी 97.1 FM। तुसा सुनने पर तुसा अपना प्रोग्राम, तुसा ने अपने रेडियो स्टेशन टू रंगे कश्मीर जेड़ा कि तुसा ने खिदमत की, तुसा ना भ्रा, तुसा ना दोस्त, तुसा ना सज्जन, व्हाटएवर यू कॉल मी, जड़े नाम नाल जड़े लकम नाल तुसा मी पुकारने हो, मैं तुसा दी खिदमत च हाजिर हाँ। उमर जंजुआ उम्मीद करना जी सा मैं तुसा के मिस करना, तुसा भी मिगी मिस करने हो। सो लास्ट वीक ट्यूसडे जड़ा ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस में ना अच्छी सकिया किसी वजह तू प्रोग्राम ना करी सकिया, उसने वास्ते तुसा सारे को माफ़ी मंगना। माड़ियो भैनों, माड़े भ्राओ, तुसा सारे की खुश आमदीद, सलाम अलैकुम। और उम्मीद करना तुसा जिथे भी हो खुश हो, हसने रहो, वसने रहो, अल्लाह ताला सारे की खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, जिथे भी माड़ी आवाज़ पुजने जिथे जिथे तक, चाहे वह नाटीगम ने अंदर है, चाहे नाटीगम तो बहर है, नाटीगम ने अंदर या नाटीगम ने बहर, जिथू भी तुसा माड़ा ही प्रोग्राम रंगे कश्मीर सुनी रहे हो जी, तुसा सारे की वेलकम करने हैं। ये फ्लाइट जी है जी, ये रंगे कश्मीर की फ्लाइट उड़ान भर चुकी है जी, ये इस अपनी परवाज वाले पास उड़ना शुरू कर दिता, और तुसा अपने हिफाजती बैल्ट जेड़े नो बनी गए नो, और साढ़े नाल इस सवारी ना मजा गिनो। जी अज है जी मंगल वाला दिन, अज ट्यूसडे है, ट्यूसडे 8 अगस्त 2026। मैं तो पूरी सेंचुरी पीछे चला गया। उन्नीस सौ पता नहीं केड़ा बंदा आया सी, केड़ा नहीं सी, पर जेड़े भी सन जेड़े इत्थे आले, जिन्हें अल्लाह उन्हें जिंदगी दिया ते जेड़े चले गए, अल्लाह उन्हें माफ करे, बख्शिश करे उन्हें। Yeah, so the ladies and gentlemen, the time is right now, it's 7 minutes past 7 and it's 18th of August 2026. and the time right now is 7 minutes past 7 and today is Tuesday. माड़े तो पहले फाखरा भी प्रोग्राम करते हैं सुनबे, माशाला कैसा मजे ना बड़ा चंगा प्रोग्राम होना उन्होंने, बड़ी मीठिया मीठिया गल्ला करने ना, और बड़ी यकीन करो उन्हें कि मैं सुनना अछना सा पाया गड्डी विच, गड्डी चलाना सा पाया, स्टूडियो अछना सा पाया, तो दिल नहीं सी करना कि रेडियो बंद करा, लेकिन जहरी गल है टाइम नहीं, किल्लत नहीं बजा, मैनी मोर थिंग्स बंदे की फिर रेडियो बंद करना पैना, and you got to do things in your life. Fakhra api sade ik mashallah purane bahut purane presenter hain, mashallah unna na program jehda hai oh bada hi zabardast hona hai, ta radio fizan ni tarfon je program jitne bhi tusan vaste aunde jane itthe kite jane, Monday to Sunday 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. ये सारे साड़ी community वास्ते होने, तुसा भैणा भ्रा वास्ते होने, तुसा जितने भी साड़े लिसनर, तुसा सारे वास्ते होने, तो उम्मीद करने तुसा सारे प्रोग्रामा की सुनने भी उसो, इंजॉय करने उसो, और नाल नाल अपनी फीडबैक लाजमी दिया करो, तुसा की फीडबैक जी बड़ी इंपोर्टेंट होनी है, और यह फीडबैक जी तुसा देने उस बंदे की जी कोई थोड़ी बहुती कोई अगर कमी पेशी होनी है तो बंदा उसी दूर करी सकना। बहुत सारे दोस्तों ने यह फिर ख्वाहिश भी सी और उन्होंने दिल भी सी, उन्होंने
और मिगी बार बार आखिया जाना सी कि जी तुसा कोई एदा प्रोग्राम करो जड़ा इस कश्मीर दे हवाले नाल होवे, बिल्कुल तुसा दा भरा, तुसा दा दोस्त, तुसा दा सज्जन उमर रंगे कश्मीर प्रोग्राम लैके तुसा नी खिदमत च हाजिर है। इसने बिच ऑबवियसली पहाड़ी जबान जड़ा ना बंदा कोशिश करना कि बंदा इसकी बोले और बेहतर अंदाज नाल इसकी कंडक्ट किया जाए। माड़ी कोशिश होनी है जितने चंगे तो चंगा प्रोग्राम मैं पेश करी सकां करसा तुसा भैणा भ्रां वास्तै, ते तुसा भी हर ट्यूजडे जरा भुलिया ना करो शामी 7 to 9 एवरी ट्यूजडे फ्रॉम 7 PM to 9 PM एंड दिस इज योर वेरी ओन शो, योर वेरी ओन होस्ट उमर जंजुआ, तुसा ना अपना भ्रा, योर ओन फ्रेंड, योर ओन कॉलीग, व्हाटएवर यू कॉल मी, व्हाटएवर यू रिमेंबर मी एज योर बेस्ट फ्रेंड, योर कॉलीग, योर नेबर, मैं तुसा की खिदमत च हाजिर हाँ और उम्मीद करना तुसा माड़ा साथ दे सो। अगर तुसा लाइव गोल करनी है स्टूडियो बिच अच्छो स्टूडियो लाइव गोल करो, नंबर है 0115-7100-971। तुसा इस नंबर है 0115-7100-971 मी कॉल करी सकने, कॉल करी सकने माने लाइव गल करी सकने स्टूडियो बिच, ते जे अगर तुसा व्हाट्सएप का मैसेज भी करी सकने असा की व्हाट्सएप नंबर साढ़ा इयै है, यू जस्ट हैव टू तुसा किसे +44 नाल लाओ तो 1157100971 सेम नंबर है। इस अलावा लोकल फ्रीकुएंसी ते तुसा असा की सुनी सकने हो, डैब रेडियो ते असा सुनी सकने हो, यू कैन आल्सो लिसन टू अस ऑन फेसबुक, ऑन आवर वेब पेज radiofazaar.co.uk पर फेसबुक ते सुनी सकने हो, बाकी सोशल मीडिया चैनल जितने, एंड आल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन मेनी मेनी डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू।

गल्ल एह् ऐ कि किसे दी कामयाबी विच जाना, कोई अगर साढ़ा भरा सज्जन बेली, कोई साढ़ा वीर जेह्ड़ा कामयाब होना जिंदगी च, अगर किसे शोबे विच वी हो, किसे शोबे च उसी तरक्की लब्भनी, अल्लाह ताला उसगी इस चीज़ नाल नवाजना वै, ते साढ़ी कोशिश होनी चाहिए कि उसनी खुशी च खुश होवो, उसनी खुशी च खुश होवो और उसनी खुशी ने गीत गाओ, उसकी जेह्ड़ा ना इनकरेज करो कि यरा तुझे और मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, हूँ जैसा मैं एक प्रोग्राम करी जहाँ रंगे कश्मीर में, तुसा कि बार बार आना, यू हैव टू गिव मी द फीडबैक कि हाउ एम आई डूइंग, माड़ी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, किस तरह तुसा कि मजा सी, किस तरह तुसा जाने हो कि साढ़े इस रेडियो ने प्लेटफॉर्म चो प्रोग्राम किए जा जेड़े कि तुसा ने दिला ने बिल्कुल अंदर वसे हो, ताकि असा एक आवाज़ मारा ना तो पूरा नाटिकम कट्ठा हो जाए।

अच्छा एक आवाज मारा रेडियो फिजा नहीं तरफ एक आवाज जाए तो साढ़े भैन भ्रा जो दौड़ी गया असों को पुछन हाँ जी कि जगह तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि ये रेडियो स्टेशन तपना है। सो माड़ा आखना ये माड़ा ही है पैगाम आना कि ऑलवेज कोशिश करो कि जिथे भी रिश्ता तुसाना जिथे भी कोई भी लिंक है सब तू बड़ी चीज़ होनी है मुखलसी, सब तू बड़ी चीज़ है मुखलसी। जो मुखलसी ना तुरी सकने

जिथे जिथे तक साढ़े कश्मीरी भैन भ्रा बसने जी सारे वास्ते दुआगू अल्लाह ताला उन्होंने अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे जिथे भी वो रहने पे जिथे भी वो है अल्लाह ताला उन्होंने हर तरह की अल्लाह ताला उन्होंने हिफाजत फरमाया अल्लाह उन्होंने प्रोटेक्शन करे अल्लाह उन्होंने हर मकसद की कामयाबी दे आमीन।

वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. जी कमर्शियल ब्रेक ना टाइम सी असें कमर्शियल ब्रेक जेडी है बड़ी जरूरी होनी है. विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी जस्ट गोना गो स्ट्रेट टू द ट्रैक. ए माड़े भाई नु ना खैसी मारो जंदरो ते जुलो माड़े नाल आए कश्मीरियो क्या बात है सोनी. मारो जंदरो ते जुलो माड़े नाल बाय अकरम राई उन्हें आखे जी गाना लाओ. एंड डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल द कश्मीरीज. All the Kashmiris out there, bro, you're doing a brilliant program. Keep it up. And I'm listening to you right now. And I want you to play this track because there's five of us in the car. And all of us, we love this track. And we want you to dedicate this to all our Desi crew and all the Kashmiris out there. And just pray for the Kashmiris. And you mixed up with the words there at the end, brother. जी जी बिल्कुल पेश करें जी. तुस मारो जंदरो ते जुलो माड़े नाल. बिल्कुल जी सुनो जी. मारो जंदरे ते जुलो माड़े नाल. ऐ ते जंदरे है बहुत ना जंदरों लिखे है. कोई गल नहीं. इट्स ओके हैपेंस. यू आर लिसनिंग टू रेडियो फिजा 97.1 एफएम / डैब रेडियो. बिल्कुल तुस असां की लोकल फ्रीक्वेंसी ते सुनी सकते हो 97.1 एफएम ते. ऑल्सो यू कैन लिसन टू अस डैब. आई वुड से यू ट्यून इन डैब. DAB is much better. And also you can listen to us on radiofizar.co.uk, www.radiofizar.co.uk. You can listen to us live on Facebook or via our Radio's Own app. We have our Radio's Own app which you can download in your phone. Bilkul ji app hai sadi. Tusa apne radio download karo. Har Tuesday shami 7 baje mara program hoya hai. Usle tusa iski suni sakde ho live. Tu tap kari hai ऑन करो ऐप तो लाइव रेडियो शुरू हो जैसी. तो माड़े तो इलावा भी जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने रेडियो फजा ने स्टूडियो तो सारे की सुनिया करो. सारे की हौसला अफजाई भी करया करो और कोशिश करया करो कि तुसा अपनी फीडबैक लाजमी दो. वी नॉट गोना वेस्ट एनी मोर टाइम. वी गोना गो स्ट्रेट बैक टू मारो जंदरे ते जुलो माड़े नाल.

अली जी तुसां हमेशा आखने सो जी कोई प्रोग्राम जेड़ा ओ कश्मीर ने ना ना भी होना चाहिए बिल्कुल असें तुसां ने आखने पर प्रोग्राम जेड़ा ये शुरू कीता है और तुसां ऑलवेज साड़ी सपोर्ट करने हो तुसां ने सपोर्ट ना तुसां ने इस प्यार ना असां दिल तो जेड़ा ना शुक्रगुजार हां तुसां ने ते जितने भी माड़े भैन भरा माड़ा आवाज़ सुनी रहे हो यू आर लिसनिंग टू रेडियो फज़ा 97.1 FM तुसां अपना लोकल रेडियो डैब रेडियो हमेशा ऑलवेज जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने इस रेडियो स्टेशन तो ऑलवेज सारे प्रोग्राम सुनिया करो और कोशिश करया करो कि अपनी फीडबैक जी है वह दया करो तुसां दी फीडबैक जितनी भी आनी असी साढ़े वास्ते चंगी है क्यों कि असा पता लगना रहा कि साढ़ा प्रोग्राम कैसा चाहिए अगर कोई कमी पेशी रहनी है तो बंदा उसकी दूर करने की कोशिश करना है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बैच न्यू बैसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच Nantendale NG2 4L में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968668046666444 या 011-555-916-8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tile.
7: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

0: धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।
1: इमरजेंसी लगी थी, सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था, स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में बंद किए गए थे। जब एक साल बीत गया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया एक बरस भी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ।
8: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें। आइए आकर मुझसे मिले। मेरा नाम है रेडियो रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।